क्या बात है, 975-673-3331 क्या बात है चमकीला साहब। हाय हाय खूबसूरत शाम ते खूबसूरत शाम खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां ते मैं थोड़ा अपना मेजबान प्रभ संधू

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: किसी ने भी अगर कार वैन एसयूवी लेना टॉप टॉप टॉप का नाम एक है वो है एरन मिल्स एक्यूरा। एरन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप भला अते करण शर्मा नू कॉल करो। नंबर वन सर्विस, नंबर वन रेट्स, प्रोफेशनल अते ऑनेस्ट टीम ते रिलायबल। सो कार वैन एसयूवी कोई भी लेना होवे एरन मिल्स एक्यूरा 905 828 5800 905

0: is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Parta, Hamsafar, Sanja Versa.
2: Geet Sangeet, Desh Duniyadiyan, Taza Tareen Jankariyan Na Labrez, Mehkandi Sogat Vandada, Sanja Versa.
1: Somvar to Shukarvar. 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार ले संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिबा वे चित दे महावाक अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: 0868-9257.
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
0: पर हुन थोनू कार लेन ली रेडी करेंगे मॉर्गेज द किंग गिरीश शर्मा.
2: रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रीफाइनेंसिंग, डेट कंसोलिडेशन, सेकंड थर्ड मॉर्गेजेस, प्राइवेट फंड्स.
0: सब ले याद रखो गिरीश शर्मा. प्री अप्रूवल ही नहीं क्लोजिंग तक देंगे पूरा साथ. डीलिंग विद ऑल बैंक.
2: कॉल 6476068110
0: और विजिट sharmamortgages.com.
3: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
4: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया. अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ले आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ.
3: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम. लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किड्स प्लान, RRSP, RESP, TFSA. कॉल करो
4: 6475-5294-647-835-5294. शादी दी मूवी बनवाउन लई या रिंग सेरेमनी लई वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन लई याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने. बुकिंग लई आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-930-1251.
5: ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਚੰਗਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ?
6: ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ. 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ.
4: ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
6: 416-717-2929.
4: 416-717-2929. ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ, 14 ਸਟੇਨਵੇ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਯੂਨਿਟ 4, ਇਟੋਬੀਕੋ.

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरूआं नूं
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे 7 दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.

सतगुर होए दयाल तसरदा पूरिए, सतगुर होए दयाल न कबहू झूरिए, सतगुर होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके एक बार फिर खूबसूरत ते चढ़दी कला वाली सवेर दे विच खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधू।

0: 0545126000।
1: टैक्स का सीजन आ चुका है, पुराने अकाउंटेंट नाल खुश नहीं हो या टैक्स दे विच थोड़ियां बचत किथे होई हैं, केड़े-केड़े लिमिट्स तुहाडे लई सरकार ने सेट किते हन, लोन मिल सकदे ने या किते भी थोड़ी कंपनी दी शेप किस तरह होनी चाहिदी है। पंजाब टैक्स सॉल्यूशन दे जगजीत साचा जी मिसिसागा ते कैम्ब्रिज दीआं दो लोकेशनस तों नवीआं फाइल्स इत्थे लै रहे ने, उत्थे तुहानू सुचेत करदे हन आउण वाले समें लई। टैक्स दीआं सर्विसिस लई पंजाब टैक्स सॉल्यूशन 416-720-3642 416-720-3642 पंजाब टैक्स सॉल्यूशन।
2: ड्राइव कर रहे हो, शो नो एंजॉय कर रहे हो, कुछ भूल रहे हो?
3: ड्राइविंग लाइसेंस?
2: नो।
3: पुलिस ऑफिसर?
2: नो नो।
3: ट्रैफिक लाइसेंस?
2: नो।
3: देन
1: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज। मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले। आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज नाल काम कर रहे पवन कौर गिल। 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो, होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी। 647-325-9900 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस।
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
1: की तुसी कैनेडा विच स्टूडेंट वीजा दे उत्ते वर्क परमिट ते आए होए हो या तुसी कैनेडियन सिटीजन या पीआर होल्डर हो, अपने दोस्त रिश्तेदार ते मित्रां नूं अगर विजिटर या टूरिस्ट वीजा ते कैनेडा बुलाउणा चाहुंदे हो तां परखिया ते भरोसे वाला नाम पंजाब विच सब तो वध सक्सेस रेट दे नाल ईजी वीजा विजिटर वीजा कैनेडा दा लगवा के दे रहे हन। वधेरे जानकारी लई ईजी वीजा 9592200200 9599220200 ते अज ही कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बनाओ। ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਰ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋਗੇ? ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, 5-star ਹੋਟਲਸ, ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕਾਰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-816-8401 416-816-8408-8401।
5: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है, ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने, ते कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जांदी है। पर कैनेडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस दे लई लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इनसॉल्वेंसी प्रोसेस। तुहानू डेट नू प्रॉपरली असैस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने। इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच लिया सकदे ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200 416-518-3200।
6: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
7: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
8: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
9: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।
10: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, इतनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
11: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
12: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
13: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
14: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: ਇੰਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਗਿਆ, ਬਟ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਪਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 1999 ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸਟ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉਸ ਮਲਬੇ 'ਚ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜੀ ਬਚ ਜਾਣ। ਸੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
1: जी। सत श्री अकाल, कैसी हैं आप?
0: जी। सर बहुत अच्छे।
1: बहुत अफसोस की खबर है जो आपने सुनाई है।
0: जी जी
1: ये 2-3 दिन पहले आपके रेडियो पे मैं ये बोला था कि इस तरह के जलजले और तूफान आएंगे, क्योंकि अत्याचार जो दुनिया में बढ़ रहा है ना, वो नापसंद हो रहा परमात्मा को, ये मेरे अल्फाज थे। तो वो देखिए, आप ये नजर वेनेजुएला हो चाहे इसराइल हो, कहीं पे भी आ सकता, क्योंकि भौचाल का दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, लेकिन आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो ये बता सके कि भौचाल कब और कैसा आएगा और कितने रिक्टर स्केल पर आएगा। ये चीज अभी भी परमात्मा अपने हाथ में रखा हुआ है। चाहे लाख तुम तरक्की कर लो, अरे इंसान तू बड़ा कमजोर है रे, बोला ऊपर वाला। तो ये तमाम चीजें हैं, तकलीफ होती है। अब देखिए वेनेजुएला के सारे लोग क्यों तकलीफ में आते, क्योंकि जब हुक्मरान कोई गलती करते और अवाम खामोश होती ना, तब भड़कता ऊपर वाला कि मैं तुमको आग दिया, जबान भी दिया, तुम देख भी रहे हो और मुंह से कुछ नहीं बोल रहे। और ये जो है बड़ी अजीब ख्याल मुझे आता है कि खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। हम ना मजनू हैं ना फरात के कुछ लगते हैं, हम किसी दश्ते तमाशे में नहीं आएंगे। मुख्तसर वक्त ये है कि बात नहीं हो सकती, दर्द इतने हैं कि खुलासे में नहीं आएंगे। और इसकी कुछ खैर खबर है तो बताओ यारो, हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। और आखिरी का शेर तो मडरों के ऊपर है कि जिस तरह आपने बीमार से रुख्सत ली है, जिस तरह आपने बीमार से रुख्सत ली है, साफ लगता है कि जनाजे में नहीं आएंगे।
0: क्या बात है,
1: क्या गजब के लोग थे, कैसा बोले आप। देखिए दिशा रही है, हर आदमी मैंने देखा, राजेंद्र सिंह बेदी, मैं हर आदमी नहीं देखा इस अंदाज से गुफ्तगू करता। भाई दुनिया की क्यों नहीं फिक्र कर रहे हैं, दुनिया में रहते हैं आप नेबर्स का ख्याल रखने का हुक्म है हर उसमें ग्रंथ में, हर जो है सो गुरबानी में भी है लिखा हुआ, भाई पड़ोसी का ख्याल रखो, उसको तकलीफ ना हो। यहाँ तो यार पूरा मुल्क तकलीफ में होता और कोई वो नहीं देते। सबसे पहले देखिए माकानी साहब बोले, जो इमदाद बोले मैं C-130 प्लेन में भेजाऊंगा, और जो भी मदद के, इंडिया भी बोला, नरेंद्र मोदी भी बोले कि भाई मैं देने के लिए तैयार हूँ, किसी किस्म की सहायता हो, और पूरा जो है शोक की प्रकृत में हम आपके साथ खड़े हैं। तो इंसान जो है मदद करो, इंसानों की मदद होती। कोई जानवर देखे कभी फंस गया तो चीख चीख के वही मर जाता, कोई दूसरे जानवर आके देखते, मगर कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि उनके अंदर वो हिस्स नहीं दिया ऊपर ने जो हमको दिया है। तो बहुत तकलीफ होती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप हमेशा नई चीजें लाते हैं और बहरहाल बुराई को खत्म करिए दुनिया में, और गलत चीज देखे तो जरूर बोलिए, नहीं बोलने से फिर वो ऊपर ऊपर वाला बोलता, मैं बोलता हूँ ना, तुम ना मत बोलो, अब मैं करूंगा ये काम।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो ये बातें होती हैं, प्लीज शुक्रिया बहुत बहुत सारों को, सत श्री अकाल।
0: जो ये प्रेसिडेंट वेनेजुएला के लेके आए थे ये, है ना?
1: जी जी, मडोरा, मडोरो नाम है उनका, मडोरो नाम है उनका, लेके आया उन्होंने जेल में, इसलिए तो ये शेर बोला मैं कि जिस तरह आपने बीमार की रुख्सत ली है, साफ लगता है कि जनाजे में नहीं आएंगे। कैसा आएंगे, जेल में है ना,
0: नहीं अब उनका
1: जनाजे नहीं,
0: वहीं पे हैं वो, तो आगे क्या उनका
1: नहीं नहीं वहीं पे कहाँ है, वो तो अमेरिका में ला लिए थे ना उनको, वाशिंगटन में केस चल रहा है उनका।
0: वही मैं कह रही हूँ कि उसके बाद का क्या हुआ, हुआ कुछ है
1: उसके बाद का। उनकी जगह दूसरी जो हुकूमत केयर टेकर थी, वो अमेरिका ने अपने मिजाज के बंदे को बिठा दिए। और उनकी एक और एक भी थी जिसको याद होगा, मैं नाम उसका बोल रहा हूँ, उसको वो मिला था वो नोबेल पीस प्राइज,
0: ठीक है।
1: तो वो आकर डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में बोली ये ले लो तुम, मुझे मिला है तुम ले लो। तो मैं पूछ रहा हूँ देने से पहले वो ये नहीं सोच रही कि जो देने वाली कमेटी है वो कितना नाराज होगी? अगर उसको देना होता तो डायरेक्ट उसको नहीं दे देता ट्रंप को, आपको देने की क्या जरूरत है?
0: जी बिल्कुल जी।
1: सोचे भाई मैं आपको जायदाद दे रहा हूँ, आप जो आप बोल रहे मेरे रिश्तेदार है, आपके रिश्तेदार है, मैं उनको दे देती हूँ, मुझे नहीं मालूम ये मेरे रिश्तेदार है काबिल होते तो मैं उनको नहीं देता, आपको क्यों दे रहा हूँ, दान में क्यों दे रहा हूँ? जरा गौर करिए ना भाई बात को, ये पॉइंट्स नहीं समझ रहे। दुनिया जो है अपने हिसाब से चल रही है, जो बैठता सीट पे ये सोचता जी मैं सबसे बड़ा फिरौन, मैं सबसे बड़ा वड्डा हूँ। अरे तुम वड्डे है ही नहीं, तुम खाने पीने वाले सोने वाले, तुमको थकान होती, तुमको प्यास लगती, तुमको बीपी तुम्हारा हाई होता। एक मेरे दोस्त थे बड़े मिलियनर, तो वो मुझसे बोलते थे यार मेरे पास दुनिया की हर खुशी है। मैंने कोई खुशी नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारा गलत फहम है। बोले कैसा बोल रहे हैं आप? मैंने वैसा बोल रहा हूँ थोड़ी देर पहले तुमने कुछ खाया, ये क्या है पूछा? तो बोले वो ब्लड प्रेशर की गोली मैंने खाई। मैंने कहा अजीब बात है यार, तुम्हारा ब्लड है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। बोले क्या बात बोले यार, आज तक जहन में नहीं आई। तो गौर करिए कि ये क्या चीजें हैं। फिर आपकी चीज, मैं एक फिलोसफर आदमी हूँ बीबी, मैं फलसफाना बात करता हूँ। दुनिया जो है उन चीजों पे रोशनी नहीं डालती, इनपुट नहीं डालती, योगदान नहीं डालती जिसपे मैं डालना चाहता हूँ, क्योंकि आप भूल गए मेरा काम है याद दिलाना। इंडिया में हर वकील के पीछे एक अलमारी होती है, उस अलमारी में लिखा होता है किताबों पे AIR। क्या मतलब है AIR का? AIR का मतलब है ऑल इंडिया इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसमें जूनियर देख के सीनियर को बोलता साहब ये फुला अदालत में अमृतसर में लुधियाना में जलंधर में मोहाली में ये अदालत में ये फैसला हुआ था, हम भी मांग रहे हैं, कोई नई चीज नहीं दे रहे हैं आप।
0: ठीक है।
1: तो उसपे जज खुश होता, अच्छा ये पहले भी हुआ सी? हाँ जी पहले हुआ, आप तवज्जो ही नहीं दे रहे। तो ये होती है इन्फॉर्मेशन
0: जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भी बख्श देने के लिए, सारों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल
0: जी। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी, बड़ी वधिया जड़ी गलबात है कीती और बड़ी जानकारी है, पर अपने को ना समा बहुत ही सीमित हुंदा। ते लो जी आपां हुण सरांश नाल गलबात कर लईए, थोड़ी जी यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी इंक तों सरांश है साडे नाल। ते सरांश जिहड़े बड़ी वधिया हैल्प कर रहे हैं साडे सारिआं दी, जिन्हां नूं ग्रांट चाहीदी है बस तुसीं फिर फटाफट कॉल करनी सरांश नूं। ते सरांश दा मैं नंबर जरूर दऊंगी। ते पहला आपां गलबात थोड़ी जी करिए तां कि तुसीं जिहड़ा हैगा जानकारी हासिल कर लो, ते फिर उस तों बाद कॉल करके ग्रांट दे लई एलिजिबल हो के नहीं हो सारी जानकारी थानू फिर सरांश दे देंगे। हां जी सत श्री अकाल सरांश, की हाल चाल?
2: थैंक यू, सत श्री अकाल जी, सारे नु वधिया जी, तुसीं दस्सो जी।
0: जी जी बहुत वधिया। ते सरांश पहला तां अपना दसो एक्सपीरियंस कि किद्दां दा रहा, जिहड़े क्लाइंट्स तुहाडे नाल जुड़दे आ ते फिर उहनां दा जिन्हां दा काम डन हो गया की फील करदे हो, किवें दा एक्सपीरियंस आ तुहाडा?
2: जब काम हो जाता है तो वो ब्लेसिंग्स भी देते हैं, क्योंकि हम एकदम एंड टू एंड ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पहले जिन लोगों के लिए चीज नहीं है, न्यू है, वो हैरान होते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑफिस आते हैं या फोन पे ही सेटअप कर लेते हैं। जब उनके काम में फंडिंग आ जाती है तो वो खुश हो जाते हैं, ब्लेसिंग्स भी अलग से देते हैं, हमारी छोटी सी फीस भी तब दे देते हैं। ओके, सो हमारी कंपनी का नाम है यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी, 8 साल हो गए हैं हमें। एजुकेशन फंडिंग में हम डील करते हैं, आप कोर्सेज करें, हमारे पास गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स हैं, अकाउंटिंग करें, मैनेजमेंट सीखें, फुली ऑनलाइन आसान से कोर्सेज हैं, कोई एज लिमिट नहीं है इसमें। अगर आप पेंशन पे आप तब भी एलिजिबल हैं, अगर आप 50 इयर्स के 75-30 के आप तब भी एलिजिबल हैं। कोई क्रेडिट चेक गवर्नमेंट, इसका गवर्नमेंट आपको फंडिंग देते समय क्रेडिट चेक नहीं करती है, गवर्नमेंट आपको एजुकेशन के लिए फंडिंग दे रही, जैसे माता पिता में बैक होम दिया करते थे। तो इसमें कुछ भी एंड टू एंड कैच नहीं है, कुछ भी हिडन नहीं है। और इसमें अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर है, आपकी इनकम कम है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे लेस देन $70,000 है, तो ये मैसेज आपके लिए है और बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए।
0: ठीक है, और वैलिड कब तक है, कब तक ये ग्रांट है जो अवेलेबल हो सकती है?
2: हाँ जी, सो 30 से 100,000 की फंडिंग होती है, जिसमें से हाफ पोर्शन क्या है, नॉन रिफंडेबल ग्रांट, वो पैसा जो आपने वापिस ही नहीं करना होता। डिपेंडिंग ऑन फैमिली साइज, अगर आप मैरिड हैं, मैरिड विद किड्स हैं, ये फंडिंग बढ़ती जाती है। सिर्फ 28 दिन रह गए हैं, आज फैमिली ऑफ फोर, अगर आपके दो बच्चे हैं चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं, देयर काउंटेड एज डिपेंडेंट्स, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं तो उनको 80,000 की फंडिंग आ रही है, उसमें से 40,000 तो ग्रांट ये जो वापिस ही नहीं करना। जो रेस्ट $40,000 है ऑप्शनल लोन है, 0% पे है इनिशियली, और 1.5 साल बाद जो लौटाना स्टार्ट करेंगे तो उसका ब्याज सिर्फ 2.5% है पूरे साल का, मतलब 10 साल में आप जब उसे लौटाएंगे आपका ब्याज सिर्फ $4,000 है 40,000 पे 10 साल के लिए, बताइए ऐसा आपको लोन भी कहाँ मिलेगा। ओके, अगर आप 28 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, 28 डेज बाद, गवर्नमेंट ग्रांट्स में कट कर रही है, हमारे हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में है, तो उसमें कुछ कैच नहीं है, कुछ हिडन नहीं है। 28 दिन बाद गवर्नमेंट का जब न्यू अकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, ग्रांट्स गवर्नमेंट बंद कर रही है, फैमिली को कोई 80,000 की फंडिंग आएगी लेकिन सारा का सारा लोन होएगा, ग्रांट गवर्नमेंट कट कर रही है। तो अभी एनरोल पे कॉल करें।
0: ठीक है। अच्छा सराज, जैसे ये मनी मिलती है ना, तो इस मनी को सिर्फ एजुकेशन पे ही यूज कर सकते हैं कि कहीं भी कर सकते हैं?
2: ओके, जैसे आप फैमिली ऑफ फोर को एग्जांपल लेते हैं, $80,000 आया, 80,000, उसमें से गवर्नमेंट जब फैमिली के अकाउंट में पैसे डाल रही है, हस्बैंड वाइफ के अकाउंट में, सेम टाइम गवर्नमेंट कॉलेज की फीस पे कर देती है।
0: अच्छा,
2: आपकी जेब से कुछ नहीं गया, आपकी जेब से कुछ नहीं गया, फीस भी नहीं कॉलेज की गई आपकी जेब से, गवर्नमेंट ने एक हाथ से कॉलेज को पैसे दे दिए उसकी फीस, डिपेंडिंग ऑन कोर्स आपकी फीस आपकी डिपेंड करती है, दूसरे आपके गवर्नमेंट ने आपके खाते में पैसे डाले, हमारे पास कुछ नहीं आया। ठीक है, ओके। अब उसके बाद आप इस पैसे को कोलैटरल फ्री होता है, सिक्योरिटी फ्री फंडिंग गवर्नमेंट आपको देती है डायरेक्ट आपके खाते में, कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको लिविंग एक्सपेंसेस कवर अप करने के लिए दे रही है, किसी के लिए लिविंग एक्सपेंसेस ग्रोसरी करना, किसी के लिए गैस स्टेशन पे गैस भरवाना, किसी के लिए बैक होम भेजना, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। जो लोग एनरोल है हमारे क्लाइंट, वो सेकेंड ईयर के कोर्स कर रहे हैं, थर्ड ईयर के कोर्स कर रहे हैं, और जो रह गए हैं वो रह ही गए हैं और रह ही जाएंगे ग्रांट से। आपके लिए सब दोस्तों ने ले लिए है, आप पीछे ना रहे। अगर आप 5 कॉल मिलाएंगे, 3 ने एडमिशन ले लिया होगा, 2 ने हमसे लिया होगा, अगर वो आपको नहीं बता रहे तो आपको झूठ बोल रहे हैं।
0: ठीक है। अच्छा, आपकी फीस कितनी है?
2: ओके जी, इसमें हमारी फीस है 199 या 499 डिपेंडिंग ऑन कोर्स, कोई कमीशन, कोई कैच, कोई हिडन फीस नहीं है। हम शुरू में फीस लेते ही नहीं है, आपके आप आज ज्वाइन करते हैं, आसान सा फुली ऑनलाइन कोर्स, घर के कंफर्ट से आप ज्वाइन करते हैं, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, 50 साल के पेंशन पे हैं, 2 से 3 घंटे आपने निकालने पड़ेंगे, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, और एग्जाम्स नहीं है, असाइनमेंट्स है। आप ऐसा कोर्स आज ज्वाइन करते हैं, 30,000 से 100,000 की फंडिंग, जिसका हाफ पोर्शन तो ग्रांट है, वापसी नहीं करना, आपके अकाउंट में 30 से 90 डेज में आ जाता है फंडिंग।
0: ठीक है।
2: तब आपने ईमानदारी से, मेरी ईमानदारी या आपकी ईमानदारी चेक हो रही है, आपने हमारी फीस देनी कितनी, 199 या 499 डिपेंडिंग ऑन कोर्स, फंडिंग आपके अकाउंट में आती है। गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर उधर डालती है फॉरेन एड में, क्यूबा को, मोजाम्बिक्यू को 158 मिलियन, क्यूबा को भी फिर से दिया उन्होंने, यूक्रेन को, तो उन्होंने पूरा देश का डेफिसिट है $60 बिलियन, $30 बिलियन तो यूक्रेन को दे दिया। जो गवर्नमेंट वहां पैसा लगा सकती है आपका, तो आप पे लगा रही है, आपको यही शक होता है कि यहां तो लगा रही है, कोई कैश नहीं है जी, कॉल करें, प्रॉपर ऑफिस है जी, कोई इसमें हम टिमोटन भी नहीं मिलते, कोई नहीं कहते जी वर्चुअली हमारा कृष्णा वैसे बहुत बड़ा ऑफिस है, आए ऑफिस में हम 7 ईयर्स हो गए, हमें कोई कैच नहीं, हजारों को असिस्ट कर चुके हैं। नंबर 437-264-31-75, कोई मीठी बात नहीं है जी, कोई इसमें कमीशन नहीं, क्योंकि सारा काम असली है। क्यों? आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट गवर्नमेंट को सबमिट होता है, उनके पास पहले से ही है, क्या रेफरी करेंगे इसमें, बताइए क्या ही लाएंगे इसमें आप, और हिलाने वाले लोग हैं वही पैसे लेते कमीशन वाले, इसको हिल ही नहीं रहा। तो नंबर है जी 437-264-31-75, 437-264-31-75, हमें कॉल करो, टेस्टी में चक्को, ऑफिस आओ, 437-264-3175। लिमिटेड टाइम रहेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही है, 30 से लेके 100,000 की फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करे ग्रांट्स ने, हम किसी और ग्रांट में डील ही नहीं करते, उन सब में कैच है, सिंपल एजुकेशन फंडिंग, कॉल करें 437-264-31-75, 437-264-3175।
0: थैंक यू सराज।
2: थैंक यू
0: जी। ते बिल्कुल जी, जरूर तुसी गलबात करो सराज दे नाल, ते वधिया है ग्रांट थानू मिल सकती है, ते अपनी कोई भी जिन्ने कोर्स हैगे है उन्हां विचों केड़ा थानू मन पौंदा है ना, तो वह तुसी कोर्स कर सकते हो, तो ज़्यादा जानकारी ले तुसी जरूर कॉल करनी है, तो मैं नंबर एक बार रिपीट कर दिंदी हाँ जी, फिर तुसी इन्हां नूं कॉल करो, तो अपनी अपॉइंटमेंट बनाओ, तो जाके मिलो 437-264-3175, 437-264-3175। तो लो जी, आपां हुण परमजीत दियोल जी तो भी रियल एस्टेट की जानकारी ले लैंदे हां, फिर आपां अगली गलबात थोड़े नाल करदे हां। जी सर, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਡਰੋਪ ਹੋ ਗਈ ਪਰਮਜੀਤ ਦਿਓਲ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ। ਅਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇਣਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਂਝ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਗਾਰੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਸੁਲਗੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੈਂਡਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮੈਲ ਆਊਗੀ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ, ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਾਓ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਸੇਫ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਈਡ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ, ਅਲਾਰਮ ਵੱਜੂਗਾ, ਧੂੰਆਂ ਕਰ ਹੋਊਗਾ ਜੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਜੇ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਊਸ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸੋ ਬੜਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਦਿਓਲ ਜੀ, ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲਓ ਕਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ। 2890105662298016 0596 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ ਜੀ, ETN ਟਰੈਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ ਮੌਜ ਮਨਾਓ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਕ ਹੋਮ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8:30 ਤੱਕ ਇਹ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ 905-463-1301 ਨੰਬਰ ਹੈ, 905-463-1301 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸ ਡਰੋਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗਨਦੀਪ ਦਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਸਗਨਦੀਪ ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੋਫੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਗਰੰਟੀ ਵਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸੋਫੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबी को। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, Nepal de vicho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sono chahide ne. Jan to see visa services Nepal de vicho, puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection open.
5: Nobel Fresh Foods share with Iko Dora Pagia. Top quality te low price with Nobel Fresh Food. Fair number lagia. Ata, da, chawal, ali sabzi te dodkyo. Sab milega Nobel Fresh Foods. 2945 Sandalwood Parkway East, Dusi Location 20 Gillingham Drive in Brampton. Phone 289-801-0566. Nobel Fresh Foods.
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888।
6: That's 905-460-8888। बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
8: आज खुश तो बात हो गया
9: ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨੋ ਬਫਰਿੰਗ ਵਾਲਾ 4K ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ IPTV ਬਾਕਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਕਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ।
8: ਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਿਲ ਗਏ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਗਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ?
9: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ IPTV ਬਾਕਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ?
10: ਚੱਲ ਕੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ
9: ਉਹ ਭਾਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 ਇਅਰਸ ਇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ।
11: ਡਾਊਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
9: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਗੋਰ ਰੋਡ 905-204-13 ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂਵੀਡੀਓ.com। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ?
12: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
13: विमला विलेज विलेज पढ़ दी पीओ च जंट पढ़ दा विमला विलेज विलेज विमला विलेज विलेज पढ़ दी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਤਨੋ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਖੀ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।

0: ਅਜੀ ਆਓ 170 ਗਿਲਡਨ ਰੋਡ ਜਿਨ ਨੰਬਰ 17 170 ਗਿਲਡਨ ਰੋਡ ਜਿਨ ਨੰਬਰ 17 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6473021322 6473 302 1322 ਜੈਰੋ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ
1: ਡਰਾਈਵਰੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले।
3: ऐसे लिए मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लिए हुणे कॉल
5: सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नू वर्ल्ड बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिल्लो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिदा
6: चल के रहे पर
5: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
7: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
5: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905 204 1313 जां tillovideo.com होर कोई सेवा

0: ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।
1: ਫੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551।
2: स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल, गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
3: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन। हुणे ही कॉल करो 416-456-6161।
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
5: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तां सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते।
4: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही नहीं हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381।
7: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpradeshradio.com ਜਾਂ www.deshpradeshtv.com। ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ TV ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7।

0: हो।
1: कैनेडा दे स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल, गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सलूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
2: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन। हुणे ही कॉल करो 456-6161।
3: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
4: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
5: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तां सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट ले हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते।
3: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381।

0: क्या बात है, आ गाना टॉर गोरा चक वाला सुदेश कुमारी। हाँ चलो देखते हैं, पता नहीं मैं कभी सुनया नहीं बट ऑटोमेटिकली आ गया। खैर सो नंबर है अपना 905-673-3337 9057333377 ने गल्लां बातां थोड़ी साड़ियां हो रही ने। एक तां तुसीं याद रखो जरूर मैसेज सब्जी मार्केट दा, सब्जी मार्केट रेस्टोरेंट भी है ग्रोसरी स्टोर भी है, 24 घंटे 7 दिन दोनों लोकेशन तो खुले ने। सब्जी मार्केट ते तुसी जाओ, हरियां ताजियां सब्जियां, हरे मटर, गोल कद्दू, चप्पन कद्दू, टिंडो, फ्रेश साग, बाथू आदि मिल रहा, ते बाय वन गेट वन फ्री, चिकन लेग, बिरयानी, फिश पकौड़ा। सब्जी मार्केट 10 लोड मेल गेट सैंडल रोड मैकलॉगलिन या 10970 ब्रैमली रोड ब्रैमली एंड कंट्री साइड। एक तुसी मिस्टर सिंह पीजे दी डीलां दा फायदा जरूर चको यार। मिस्टर सिंह पीजे ने वर्ल्ड कप दे मौके ते बड़िया जबरदस्त डीलां लाइया हुई ने। सो मीडियम पीज़ा 4 टॉपिंग 1 डिप 1 साइड 24.99, लार्ज पीज़ा 4 टॉपिंग 1 डिप 1 साइड 27.99 ते एक्स्ट्रा लार्ज पीज़ा 4 टॉपिंग 1 डिप 1 साइड 31.99। 100% प्योर वेजिटेरियन मिस्टर सिंह पीज़ा 905-504-000 9055004000 9055004000। मिस्टर सिंह पीजे की टीम ने तुसी जरूर याद रखो। तो साढ़े नाल जुड़ चुके ने सरांश यूनी ग्लोबल एडवाइजरी तो, सरांश को गवर्नमेंट दी एजुकेशन ग्रांट्स की जानकारी लेने। सरांश पहला तो वेलकम सर, की हाल है?
1: थैंक यू जी, सत श्री अकाल जी सभी, वधिया जी, तुसी दसो जी।
0: बहुत वधिया सर, बहुत वधिया। सो सरांश हमेशा कोई ना कोई नवे लिसनर जुड़ते हैं, सो जिहड़े नवे लिसनर्स ने उन्होंने जरूर दो मैसेज।
1: जी वही बात है, लाइक अब लिमिटेड टाइम ही रह गया है, अराउंड 25 दिन ही रह गए हैं सिर्फ। तो अगर आपने अभी भी एनरोल नहीं करा गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन प्रोग्राम्स में तो आप पीछे ना रहें। आपके आस पड़ोस भाई बहन माता पिता ऑलमोस्ट सब एनरोल हो चुके होंगे। लाइक 30,000 to 100,000 की फंडिंग अपने अकाउंट में डायरेक्ट गवर्नमेंट से हासिल करें, जिसका हाफ पोर्शन तो नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स है जो कि टैक्स फ्री है, इनकम में भी ऐड नहीं होता, आपका चाइल्ड बेनिफिट पे भी असर नहीं पड़ता उसका, आपकी इनकम उतनी ही रहती है जितनी आपकी है। और लाइक इसमें एज कोई लिमिट नहीं है, आप 50 के हैं, 30 के हैं या 75 के हैं, पेंशन पे आप एलिजिबल है। आपका क्रेडिट चेक भी इसमें गवर्नमेंट आपका क्रेडिट चेक नहीं करती। फंडिंग कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है? नहीं, गवर्नमेंट कर रही है। सो आप PR सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, आपकी इनकम कम है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, लेस देन $70,000 है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हो गए लाइक उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउसवाइफ, अनएम्प्लॉयड, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, आप हमें अभी भी कॉल कर सकते हैं।
0: नंबर है सरांश का 437-264-3175। सरांश सो सुनिया कि ग्रांट बंद हो रही है, कदों बंद हो रही है ते फंडिंग जिहड़ी है लगभग किन्ने की बन जाती है?
1: हाँ जी, ग्रांट बंद है 1 अगस्त के बाद जो एनरोल करेगा उसके लिए ग्रांट्स बंद है, लोन आएगा उसके बाद जो एनरोल करेगा सिर्फ। तो लोन तो मैं रिकमेंड नहीं करता ना, तो इसलिए अवेयरनेस का मैसेज आप लाइक इसको अपने हित में लीजिए। आप कुछ ही दिन रह गए हैं, 22 जुलाई को लास्ट बैच है, मतलब 15 जुलाई के आसपास रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, तो आप अभी एनरोल करें। फंडिंग डिपेंड करती है आपके फैमिली साइज पे, आप मैरिड हैं आपकी 45,000 की फंडिंग मिलती है, आप मैरिड विद 1 kid है आप 60,000, मैरिड विद 2 kids है तो लाइक 80,000, सिंगल मदर विद 3 kids है अप टू 100,000, डिपेंड करता है फैमिली सिचुएशन पे, आपकी फैमिली सिचुएशन पे। और जितनी इनकम आपकी कम है और जितनी आपके किड्स ज्यादा हैं उतनी आपकी फंडिंग ज्यादा आती है। तो यहाँ पे आपका गवर्नमेंट आपका बैंक की तरह इनकम नहीं देख रही कितनी ज्यादा आपने इनकम कमाई है, यहाँ पे आपका फैमिली साइज देखा जा रहा है और जितनी कम इनकम है उतना ही आपको ज्यादा फायदा है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, लाइक अनएम्प्लॉयड स्मॉल बिजनेस ओनर को अच्छा फायदा है, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ग्रांट हासिल करें।
0: नंबर है सरांश दा 437-264-3175-437-264-3175। सरांश लोन तो पहला ही बहुत लोगों का होंगे, की पॉसिबल है कि सिर्फ ग्रांट ही मिल जाए?
1: हाँ जी बिल्कुल जी। सो आप मान के चले अगर फैमिली ऑफ 4 है तो आप जिनकी 80,000 की अप्रोक्सीमेटली फंडिंग बनती है उसमें से $40,000 तो ग्रांट है जो वापिस ही नहीं करना होता आपने, जो रेस्ट $40,000 है वो ऑप्शनल लोन है। डर लगता है लोन से, मत लीजिए, बट आप लोग जब हमारे ऑफिस आते हैं आपको पता लगता है कि लोन 0% पे है और 1.5 साल बाद भी ये लोन 2.5% है पूरे साल का ब्याज, तो कोई मतलब 95% लोग लोन भी ले लेते हैं ग्रांट के साथ, बट यस लोन इज ऑप्शनल, ग्रांट पे फोकस करें, तो ग्रांट आज है कल नहीं है, तो कॉल करें ऑफिस आए।
0: मान लो कि जॉब नहीं लगती ते लोन नहीं पे कर सकते, तो फिर की होगा, लोन डिफर भी हो जाता है इस सिचुएशन च?
1: बिल्कुल जी, इसमें ये चीज तो यूनिक है। सो गवर्नमेंट, आप लाइक आज एनरोल करते हैं, आपने 1 साल का कोर्स करा, आप लोन नहीं दे पाते महीने के $150-$200 किस्त, आपकी जॉब नहीं लगी है, लोन डेफर हो जाता है 1 साल तक, 2 साल भी, 3 साल भी। तो मतलब आपको पहले तो कोलैटरल फ्री, सिक्योरिटी फ्री, क्रेडिट चेक फ्री फंडिंग मिलती है $30,000 से $100,000 की। लोन भी अगर आपकी हालत खराब है, नहीं चल रहा खर्चा घर का, तो लोन भी आपका डेफर हो जाता है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। ग्रांट तो देनी नहीं है, लोन भी डेफर हो सकता है अगर आपकी मजबूरी है, तो आप इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। प्रॉपर ऑफिस है जी हमारा 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे, कोई टिम हॉर्टन में नहीं मिलते, कोई वर्चुअल ऑफिस नहीं है, कोई कैफे पे नहीं मिलते, ऑफिस आए। आज भी कम से कम 15 क्लाइंट ऑफिस आए थे और लाइक आधा से ज्यादा एनरोल हो गए हैं।
0: वेरी गुड। सो सराज का नंबर है 437-264-3175, 437-264-3175। इस तरह चीज लोगों का की फायदा, थोड़ी कितनी फीस है, कोई हिडन फीस तो नहीं?
1: कोई हिडन फीस नहीं है, इसलिए मैं इतनी मजबूती से अवेयरनेस का मैसेज दे पाता है। कोई कैच होता तो अब तक तो कोई ना कोई आर्ग्यू करता। ओके, सो इसमें बातें, हमारी फीस काम होने के बाद $199 या $499 फ्लैट फीस है। हमारी नजर हमारी छोटी सी फीस पे, ना कि आपकी फंडिंग पे। किसी को ऐसे 30,000 बन रहा है, किसी को लाख बन रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। आप अपना, आपका पैसा अपने पास रखें, हम एक जरिया है, गवर्नमेंट पैसे दे रही है आपको, और हम सिर्फ छोटी सी फीस लेते हैं अपना खर्चा चलाने के लिए। तो आप लाइक इसमें आसान से कोर्सेज है सर, आप मान के चले फुली ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आपने सिर्फ असाइनमेंट्स देनी है, एग्जामिनेशन नहीं है, असाइनमेंट्स भी हफ्ते की एक ही है यार, अटेंडेंस आपने लगानी 75%, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो कॉल करें, ऑफिस आए, गवर्नमेंट इसी चीजों में इन्वेस्ट करती है, तो देयर इज नो कैच, कुछ इसमें हिडन नहीं है। कॉल नंबर 437-264-3175, 437-264-3175, अभी कॉल करें एंड एस्टिमेट लें। 437-264-3175 नंबर अगेन जी, 437-264-3175,
0: 437-264-3175। सराश थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू।
0: 437-264-3175 ते गलबात करो। सो गल जी सी कर रहे सी घूमन फिरन दी, देखिया घूमना फिरना किनू नहीं पसंद, भी लोकल अपने इंटेरियर दे विच, अपने तो 2-4 घंटे की ड्राइव दे विच विच कितने कितने घूमन नू किहड़ियां किहड़ियां लोकेशन ने। हुण कुछ लोगों ने कुछ फॉल्स दसियां, किसी ने कहा सेंटेनियल बीच बेरी, एक वीर ने कहा कि एक आइलैंड लेक है ओरेंजविल दे विच, ते डेक्यू फॉल्स है सेंट कैथरीन्स, नाल दी नाल बैंकक्राफ्ट है, बैंकक्राफ्ट मैं यार बहुत सारी लोकेशन देखी है नहीं। सो एक लिस्ट जी मैं बनाई है, तो वह थोड़ियाँ सारिया रेकमेंडेशन असं पा रहे हैं। सो थोड़े नोन दे विच जे कोई लोकल घूमन फिरन कोई भी लोकेशन ने तो वह किड़िया ने, तुसी साडे नाल शेयर कर सकते हो, तुसी सजेस्टन सलाह देनी चाहते हो, तो 905-673-3337 अपना नंबर है, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਸਰ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਾਈਕਿੰਗ ਲਈ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਕਲਬੇਰੀ ਰੌਕ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਟ੍ਰੇਲ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਵੀਰ, ਬ੍ਰੇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈਕਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਘੱਟ ਹੈ, BC ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹਾਈਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣਾ 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, 905-673-3337, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475051557 647-504-1557। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਐਂਡ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 905-673-3337 905-673-3337। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 905-673-3337 ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰਚ ਕਰੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਂਟ ਜੇਕਬਸ ਵਿਲੇਜ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਂਟ ਜੇਕਬਸ ਵਿਲੇਜ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸਾਈਟਸ, ਟੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰੋ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਆਮਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ, ਮੇ ਬੀ ਰਾਈਟ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਰੋਂਗ। ਸੋ ਸੇਂਟ ਜੇਕਬਸ ਵਿਲੇਜ ਵਾਟਰਲੂ। ਸੋ ਵਾਟਰਲੂ ਹੋਵੇ, ਲੰਡਨ ਹੋਵੇ, ਓਰੇਂਜਵਿਲ ਹੋਵੇ, ਸੇਂਟ ਕੈਥਰੀਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਏ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣਾ 905-673-3337 ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 905-673-3337। ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵੈਸੇ ਬਣੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਿਸਟ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਸਟ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ, PUNJABIELEHRAN, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਲਿਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ, PUNJABIELEHRAN। ਮੈਂ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 40-50 ਜਣੇ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਉਹ ਭੇਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ 15-20 ਲੋਕਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲਿਸਟ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਹੈ 905-673-3337 ਆਪਣਾ, 905-673-3337 ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। SS Lawn Care ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਾਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਵੀਡ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਲਾਵਰ ਬੈਡ ਬਣਵਾਓ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 437-655-1984।